छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होना अब सीख लीजिए। छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होना अब सीख लीजिए। किसी बड़ी खुशी का इंतजार अब ना कीजिए। कोई बड़ा गम नहीं है, इसी बात की खुशी मनाइए। कोई बड़ा गम नहीं है, इसी बात की खुशी मनाइए। गम ऐ दुनिया में कितने हैं गमगीन, यहाँ पर विश्वास ना हो तो किसी से भी जाकर पूछ लीजिए। 5:35 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी अपने दोस्त अर्चित के साथ।

हर पतंग को पता होता है कि आना उसे एक दिन जमीन पर ही है। हर पतंग को पता होता है कि आना उसे एक दिन जमीन पर ही है, फिर भी वो एक बार आसमान को छूना चाहती है। इंसान भी हवा में उड़ना चाहता है, बस समस्या यहाँ पर है कि इंसान अपनी जमीन को भूलकर हमेशा ही हवा में रहना चाहता है। 5:41 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

लेते रहिए मजा हर सफर का, मंजिलों पर पहुंचकर अक्सर कुछ खास नहीं मिलता। भटकते रहते हैं दिन रात मंजिलों की तलाश में, उम्र बीत जाती है पर खुशी का वो एहसास नहीं मिलता। बहुत जल्दबाजी ना दिखाइए मंजिलों पर पहुंचने के खातिर, बहुत जल्दबाजी ना दिखाइए मंजिलों पर पहुंचने के खातिर। जो मजा सफर का है वो मंजिलों पर पहुंचकर भी अक्सर नहीं मिलता। 5:46 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

0: ऐसे मत देखो, मेरा दिल धड़कता है।
1: दिल हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल से दिल।

నిలయంలో సమయం సరిగ్గా 6 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్దిసేపట్లో హిందీలో వార్తలు, 6:05 నుండి 6:10 వరకు ఆంగ్లంలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే వింటారు. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे. विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास. इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे. वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी. श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा

0: प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. This Governing Council meeting will bring together chief ministers and lieutenant governors to discuss the inclusive human development framework. Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore

So we were talking about international artists collabing with Indian artists. And if you think this is just a random creative trend, let's break it down. मुझे लगता है कि ये एक मैसिव पावर शिफ्ट है म्यूजिक इंडस्ट्री में. इफ यू गाइस आर नॉट अवेयर, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रीमिंग मार्केट ऑन द प्लैनेट. वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट थ्रिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स अ ईयर. सो फॉर अ ग्लोबल आर्टिस्ट, फीचरिंग विद एन इंडियन सुपरस्टार इज लाइक गेटिंग इंस्टेंट एक्सेस टू बिलियन हाई एंगेज लिसनर्स. आई विल बी राइट बैक. अंटिल देन, कीप स्माइलिंग एंड कीप लिसनिंग टू रेनबो एफ एम 101.9 with me, your RJ Nidhi.

वेलकम बैक डियर लिसनर्स, मैं हूँ आपकी आरजे निधि और आप सुन रहे हो नमस्ते हेलो आदाब। अनदर ह्यूज क्राउड पुलिंग ट्रेंड मस्ट बी कोलैबोरेशन एट लाइव कॉन्सर्ट्स, जैसे 2024 में दिलजीत दोसांझ का बर्मिंगम टूर में नैना और शेप ऑफ यू का परफेक्ट कोलैब हुआ, जहां वी सॉ एड शेरन एंड दिलजीत जी परफॉर्मिंग लाइव। सिमिलरली लंदन में एड शेरन और अरिजीत सिंह साथ आए, वे वी सॉ देम परफॉर्मिंग परफेक्ट। And there was also this concert where Dua Lipa was performing in Mumbai and was seen following a social media trend where Levitating was remixed with Wo Ladki Jo, which immediately received lots of love from Indians. So this was all about India being the second largest music streaming country.

इन इंडिया। चलिए इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे जल्द ही, तब तक सुनते रहिए रेनबो एफएम 101.9 विथ मी योर आरजे निधि, और साथ ही मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हो नमस्ते हेलो आदाब ऑन रेनबो एफएम 101.9 विथ मी योर आरजे निधि। वेल, वी वर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल आर्टिस्ट टिल नाउ, एंड हम सबको पता है कि इंडिया कल्चरली कितना रिच कंट्री है। नाउ इफ यू आर अ फैन ऑफ म्यूजिक दैट मूव्स योर सोल, डांस दैट टेल्स यू स्टोरीज, और थिएटर दैट कीप्स यू ऑन द एज ऑफ योर सीट, मेरे पास आपके लिए काफ़ी फ्रेश न्यूज़ है। बस कल ही द संगीत नाटक अकेडमी ने जॉइंट लिस्ट ऑफ ऑनर्स फॉर द ईयर 2024 एंड 2025 ड्रॉप किया है। ये अवार्ड्स नेशनल रिकॉग्निशन के हाईएस्ट अवार्ड्स माना जाता है फॉर आर्टिस्ट गुरुज एंड स्कॉलर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट।

नमस्ते, हेलो, आदाब डियर लिसनर्स, मैं हूँ आपकी आरजे निधि और आप सुन रहे हो रेनबो एफएम 101.9। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू प्लेड एनी गेम? नो, आई डोंट मीन अपना डेली वॉकिंग गोल हिट करना या फ़ोन पे गेम्स खेलना। आई मीन प्योर इमोशन के साथ खुल के कोई रियल गेम खेलना जहाँ वक्त का कोई ट्रैक नहीं है और काम, रेस्पॉन्सिबिलिटी सब भूल के बस खुद को एंजॉय करते हो। अगर आप याद नहीं कर पा रहे

तो मेरे दोस्त आप अकेले नहीं हो, एडल्टहुड है ही कुछ ऐसे। पर आज चलिए अपने आप को मौका देते हैं ये सब फील करने को, क्योंकि आज June 11th है, विच इज़ ग्लोबल इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस सून। तब तक सुनते रहिए रेनबो FM 101.9 और साथ ही मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। वेलकम बैक डियर लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू नमस्ते हेलो आदाब ऑन रेनबो एफएम 101.9 विथ मी योर आरजे निधि। सो दिस डे इज़ एन इनिशिएटिव लेड बाय यूनाइटेड नेशंस, नॉट जस्ट फॉर फन बट बिकॉज प्ले इज़ इन अ सीरियस सिचुएशन। जैसे पेरेंट्स थिंक एन एक्स्ट्रा आवर ऑफ ट्यूटरिंग इज बेटर दैन प्ले, बट दे आर मिसिंग आउट ऑन द फैक्ट दैट प्ले इज इन डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम लर्निंग, बट प्ले इज लर्निंग। वेन किड्स आर आउट देयर प्लेइंग गली क्रिकेट और हाइड एंड सीक, वो लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। दे आर लर्निंग की रूल्स को फॉलो कैसे करते हैं, फ्रस्ट्रेशन को कैसे हैंडल करते हैं जब एम्पायर ने बैड कॉल दिया हो, या मेनली दे लर्न टू रेज फ्रॉम फेलियर्स आफ्टर लूजिंग अ गेम। और सोशल बिहेवियर वो तो एड ऑन है, अबव ऑल प्ले कीप्स एवरी वन हैप्पी एंड हेल्दी। तो इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले को इतना एम्फसाइज करते हैं आज के दिन, ताकि हर बच्चे को वो प्ले का जो एहसास है वो मिल पाए।

it's 11:42 a.m. in the studio clock, and you are listening to Namaste Hello Adab on Rainbow FM 101.9 with me, your RJ Nidhi. To all the cricket fans out there, I am sure it's going to be a carnival from tomorrow. जी हाँ, ICC Women's T20 World Cup शुरू होने वाला है कल से, that is June 12th. In England. The first ever ICC Women's T20 World Cup 17 years पहले यानी 2009 में शुरू हुआ था और वेन्यू तभी भी इंग्लैंड था एंड इंग्लैंड वेमेन वेंट ऑन टू लिव द फर्स्ट एवर ट्रॉफी. इन 17 ईयर्स में बहुत कुछ बदला है बट हमारे कुछ लेजेंड्स तब से लेके अब तक फील्ड पे टिके रहे अपने लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए. हमारी अपनी हरमनप्रीत कौर, सबकी फेवरेट एलिस पेरी, न्यूजीलैंड की क्लासिक ओपनर सूजी बेट्स, द डेंजरस मरीजान काप एंड द स्वीटेस्ट सोफी डिवाइन. आई मस्ट से दैट फिटनेस लेवल्स मस्ट हैव बीन क्रेजी एंड द बेस्ट पार्ट इज दे आर स्टिल डोमिनेटिंग फ्रॉम द लास्ट 17 ईयर्स. सुनते रहिए रेनबो FM 101.9 और साथ ही मुस्कुराते रहिए.

0: 300 మార్కులు సాధించిన
1: దేశం మొత్తంలో ఒకే ఒక్కడు
2: మన శ్రీ చైతన్య విద్యార్థి.
3: Just last November, Indian women went on to lift their maiden World Cup trophy and Pura India bahut proud tha. It was a dream come true. Welcome back to Rainbow FM 101.9. Main hu aapki RJ Nidhi. वन डे वुमेन वर्ल्ड कप तो जीत गए, अब बारी है T20 वर्ल्ड कप घर लाने का. यू नो लास्ट टाइम व्हेन वी वॉन द टाइटल फाइनल्स का डिजिटल व्यूअरशिप था 185 मिलियन. वेट, लेट्स सिंग दैट इन. दैट लिटरली मैच द व्यूअरशिप ऑफ द मेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल. हमारे भारत के बेटियों ने बहुत मेहनत किया है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए. एक पॉइंट पे देर वेर नो फैसिलिटीज, नो फंड्स, नो रिकग्निशन, नो सपोर्ट, नो अप्रिसिएशन, फिर भी दे नेवर गेव अप. एंड आज भारत का नाम रोशन करते हुए दे आर ऑल आउट देयर एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम ऑल ऑफ आवर सपोर्ट. सो लेट इज़ ऑल सेलिब्रेट दिस वन मंथ ऑफ क्रिकेट जस्ट हाउ वी सेलिब्रेट एनी अदर मेन्स टूर्नामेंट.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेलकम बैक टू नमस्ते हेलो आदाब और रेनबो FM 101.9 विथ मी योर आरजे निधि। सुबह से दोपहर हो चुका है और गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून हो चुका है और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया आप सबको। नाउ लुक अराउंड यू, लाइफ इतना फास्ट मूव हो रहा है कि हम उसे एंजॉय करना ही भूल गए। लाइक एवरीबडी इज़ बिजी इन देयर ओन लाइव्स एंड इन सब के बीच में हम खुद को एंजॉय करना कहीं ना कहीं भूल गए हैं। बट नाउ लेट्स टेक अ चांस, इस वीकेंड को हम सब खुद को एक चांस देते हैं थोड़ा एंजॉय, थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए। एंजॉय डजंट मीन गो टू अ वेकेशन या मस्ती एंड ऑल, इट्स जस्ट टेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, डूइंग वॉट यू लव। अगर आपको डांस करना पसंद है तो डांस करिए, सिंगिंग करना पसंद है तो सिंगिंग करिए, शॉपिंग करना पसंद है तो शॉपिंग करिए और मूवीज़ वेकेशन भी जाके आ सकते हैं वीकेंड पे। सो डू वॉट यू लव दिस वीकेंड एंड जस्ट एन्जॉय योर सेल्फ इन बिटवीन द हजल एंड ऑल्सो डोंट फर्गेट टू कीप लिसनिंग टू रेनबो FM 101.9।

That was Ziddi Dil from Mary Kom. Hope you all are enjoying Rainbow FM 101.9 with me, your RJ Nidhi. Well, Mary Kom ek aisa movie hai jo काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर करती है, नॉट ओनली वेमेन, पीपल ऑल अराउंड द ग्लोब. जो जज्बा है मेरी कॉम में, जो करने का इच्छा है और वो कर दिखाई है, दैट इज़ वॉट ऑल ऑफ अस शुड बी लर्निंग. एंड होप यू ऑल हैव अ ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग डे अहेड.

पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाय ही उसकी गलती।

बारे में नमस्ते हेलो आदाब होने वाला है ख़त्म, और हेलो रेनबो शुरू होने वाला है. और हेलो रेनबो के लिए आई हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे. मैं आपको जल्दी बताऊंगी वो टॉपिक, तब तक सुनते रहिए नमस्ते हेलो आदाब ऑन रेनबो FM 101.9 विथ मी योर आरजे निधि.

फेवरेट वक्त आ गया है हेलो रेनबो का, तो हम नमस्ते हेलो आदाब को बाय बाय करते हुए हेलो रेनबो शुरू करेंगे। सो आप सुन रहे हो एफएम रेनबो 101.9 विथ मी योर आरजे निधि। फाइनली हैदराबाद एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट हैवी रेनफॉल ऑफ द सीजन 2 डेज बैक, एंड शायद हम ये कह सकते हैं

कि आधा हैदराबाद डूब गया था। तो आज का हमारा फोन इन टॉपिक यही है, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द फर्स्ट हैवी रेनफॉल ऑफ द सीजन? क्या आप घर में बैठे मौसम को एंजॉय कर रहे थे, या बिना करंट का सफर कर रहे थे, या बाहर रोड पे फंस गए थे? वॉट वे योर एग्जैक्ट डूइंग वो तूफान के टाइम पे? आपका एक्सपीरियंस सुनने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। और आप हमें कॉल कर सकते हैं ये नंबर्स पे, 0402323-0030, 0402323-4821, 0402970-4715। मैं आपके कॉल्स का बहुत इंतज़ार कर रही हूँ, तो जल्दी जल्दी कॉल करिए और हमें बताइए आपका एक्सपीरियंस।

0: That was Hookah Bar from Khiladi 786. और हमारे साथ listeners जुड़ गए हैं अपने experience बताने के लिए. हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून सर.
1: नरसिम्हा रेड्डी बोल रहा हूँ, प्रेमावती पेट से। जी,
0: जी जी बोलिए. आप आज का टॉपिक सुने हो?
1: अपना रेंट के बारे में पूछे ना।
0: जी, आप क्या कर रहे थे कल जब पूरा हैदराबाद डूब गया था, ऑलमोस्ट इतना
1: हाँ, परसों
0: बारिश हुआ
1: शाम के
0: था.
1: गिर रहा हाँ शाम के टाइम
0: जी
1: में गिर रहा था ना मैडम। हाँ,
0: जी
1: वो मैं शॉप में बैठ के देख रहा था मैडम, पानी ऐसा रोड पे जा रहा था।
0: आप घर में थे या बाहर थे उस वक्त?
1: मैं दुकान में था मैडम, फिर शॉप है
0: अच्छा
1: मेरा, जनरल स्टोर है।
0: अच्छा नाइस नाइस.
1: हाँ, उस टाइम में गिरा नहीं रहता ना मैडम, पानी को देखते हुए मजा लिए। जो बच्चे लोग जो छोटे छोटे

0: ఒక గంట వచ్చిందండి.
1: అవును సార్, చాలా
0: ఇక కాలం తలపడిపోయింది అనుకున్నాం, కానీ వాతావరణ శాఖ వారు గద్వాల వరకు వచ్చి గద్వాలలో ఆగిపోయి మేఘాలు ఋతుపవనాలు అని చెప్తుంటే అండి, ఈ రోజు ఎండ ఎలా ఉందంటే అండి, ఇక్కడ విపరీతమైన మెయిన్
1: హలో
0: అలా ఉందండి ఎండ.
1: అవును సార్, చాలా ఎండగా ఉంది, వర్షం
0: అవునండి చాలా ఎండగా ఉందండి. ఈ ఎండలో మలమల మారుతున్నామండి. కొంచెం నిధులు ఏవి ఉన్నాయి అంటున్నారు, మా మురళీ తమ్ముడు కూడా చెప్తాడు కొన్ని నిధులు మాకు కూడా ఇవ్వచ్చు కదండి కాలేజీ.
1: సార్ థ్యాంక్ యూ సార్, మీతో మాట్లాడి
0: థ్యాంక్ యూ అండి, అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ మేడం, థ్యాంక్స్ మేడం, పోల్చెట్టి మెహర్బాబా, థ్యాంక్స్
1: సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. హలో
2: हेलो, गुड आफ्टरनून आदाब निधि जी.
1: गुड आफ्टरनून सर, आपका नाम?
2: जी शेर खान बोल रहा हूँ तलापकट्टा अमल नगर से, और सभी भाई बहनों को, दोस्तों को, सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम आदाब. और दुआ करता हूँ अल्लाह से सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे, और हर मौसम इंजॉय करने की नेक तौफीक ने हिदायत दे.
1: थैंक यू सर. आप आज का टॉपिक सुने हो सर?
2: जी जी जी जी, हमारे मुमताज बाजी को भी सलाम है मेरा, और मोहम्मद अफजल साहब को भी सलाम है.
1: जी सर,
2: मैं भी ब्लाइंड हूँ निधि जी.
1: ओके सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर परसों बारिश में?
2: हाँ, बारिश पसंद है मुझे, बारिश का और सर्दियों का मौसम, यानी ठंडा मौसम बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत होती है, गर्मी से मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ.
1: जी सर, सही है वो बात.
2: तो अभी जो बारिश हुई परसों के रोज तो हुई यहाँ तालाबकट्टा अमल नगर पे, तो बस दरवाजे में ठहर के थोड़ा बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होके बहुत अच्छा ठंडक लग रही थी, ठंडी हवाएं चल रही, बारिश के बूंदे, थोड़ा सा बारिश के बूंदों में भीग रहा था, थोड़ा अंदर आ रहा था, थोड़ा भीग रहा, थोड़ा आ रहा था, ऐसा बहुत मजा एंजॉय हो रहा था मेरा. और वो जो दहकती कड़कती धूप और गर्मी थी उससे थोड़ा सुकून मिला, तो बहुत अच्छा लगता है. लेकिन यही दुआ है कि अल्लाह हर मौसम में, मतलब ये जो बारिश भी होती है तो ऐसी बारिश हो कि हमको सबको नफा पहुंचे. कुछ बेचारे लोग जगह पे रहते हैं, उनके घर डूबते, किसी के कारोबार का, किसी का कुछ नुकसान होता है, तो बस दुआ करते हैं कि अच्छा मौसम जाए, सभी के लिए राहत हो, सुकून हो.
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.
2: और निधि जी, एक गाना है, पुरानी फिल्म है शोर
1: जी,
2: उसमें लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये प्ले कर दे आप तो
1: मैं और जरूर ट्राई करूंगी सर,
2: मौसम का मजा आ जाएगा.
1: जरूर सर, थैंक यू सर.
2: थैंक यू निधि जी, वक्त देने के लिए.
1: सो दैट वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ आवर लिसनर्स, और हमारे लिसनर्स काफी एम्पैथेटिक भी है, वो लोग खुद एंजॉय करने से ये भी सोच रहे हैं कि लो लाइंग एरियाज़ के हालत क्या हुए होंगे, विच इज़ वेरी गुड थिंग. बेचारों का घर डूब गया होगा, बट आई जस्ट होप फॉर अ स्पीडी रिकवरी फॉर ऑल ऑफ देम. कीप लिसनिंग टू रेनबो FM 101.9 विथ मी योर आरजे निधि, और आप भी आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं 0402323 0030, 0402323 4821, 0402970 4715 पे. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग.

0: Daniela. Daniela.
1: दीदी
2: हाँ
1: भैया आपको आई लव यू कह रहे थे
2: उससे अप्पा
3: हो गई। अब जनरेटर चलाइए यार, कमाल करते थे।

वेलकम बैक डियर लिसनर्स, हेलो रेनबो पे आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपकी आरजे निधि और आप सुन रहे हो रेनबो एफएम 101.9। ये बारिश का टाइम भी ऐसा था कि वो पीक इवनिंग आवर में हुआ था, विच रिजल्टेड इन खतरनाक ट्रैफिक। कुछ घंटों तक गाड़ियाँ रोड पे ही रुक गए थे, एक्सट्रीम वाटर लॉगिंग हो गया था, हर जगह पावर कट्स हो गए थे, घरों में भी वो हवा से बारिश का पानी आ रहा था। तो आप क्या कर रहे थे वो टाइम पे? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक ऑफ द फर्स्ट हैवी रेनफॉल ऑफ द सीजन? ये बताने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो 0402323-0030, 0402323-4821, 0402970-4715 पे। मैं आप सबका इंतज़ार कर रही हूँ कि लिसनिंग टू रेनबो FM 101.9 विथ मी योर आरजे निधि एंड साथी मुस्कुराते रहिए।

हम बात कर रहे थे योर एक्सपीरियंस अबाउट फर्स्ट हैवी रेन ऑफ द सीजन। तो अभी भी वक्त बचा है, आप हमें कॉल करके बता सकते हो 0402323-0030, 0402323-4821, 0402970-4715 पे। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग।

0: हरि ओम सर।
1: मैं विलास पेनुरकर नल्लाकुंटा भाग्यनगर से बोल रहा हूँ। हाँ
0: जी सर, आप आज का टॉपिक सुने हो सर?
1: जी, वर्षा से क्या परिणाम हुआ?
0: जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था बारिश में?
1: हाँ जी, परसों
0: जी
1: जो वर्षा हुआ तो
0: जी सर,
1: उस दिन का बहुत ही बुरा अनुभव रहा।
0: आपका सर, आपका बुरा अनुभव रहा?
1: हाँ जी, हाँ जी, मेरा ही कह रहा हूँ मैं
0: जी
1: आपको,
0: सर, बताइए क्या हुआ था उस
1: क्योंकि
0: दिन?
1: मैं कहीं बाहर गया हुआ था, रास्ते में कई जगह
0: जी
1: इतनी ट्रैफिक जाम हो गई थी, रास्ते में कई जगहों पर इतना पानी जमा हुआ था, ड्रेनेज फुल हो गया था, नाले फुल हो गए थे, और घर आने में मुझे 2 से 3 घंटे का समय लगा।
0: दो
1: और
0: से
1: इस
0: तीन
1: सबसे बुरी
0: घंटे
1: बात यह है कि
0: जी
1: ये अनुमान लगाया गया था कि परसों वर्षा होने वाली है, लेकिन
0: जी
1: फिर भी शासन की ओर से कुछ विशेष कदम नहीं उठाए गए। हेलो,
0: जी हेलो सर, सुन रही हूँ सर।
1: आप सुन रहे हैं मुझे?
0: जी
1: हाँ
0: सर, सुन रही हूँ।
1: जी, तो
0: जी
1: असल में हमारे नगर निगम को कुछ करना चाहिए था, हैदरा को कुछ करना चाहिए था,
0: जी सर,
1: लेकिन समय से पहले हम कभी भी कुछ नहीं करते, हर वर्ष ऐसा ही होता है। अभी
0: जी
1: तो ये
0: सर,
1: पहली बारिश है, अभी आने वाले दिनों में और वर्षा होने वाली है, तब पता नहीं क्या होगा।
0: सही है
1: लेकिन
0: सर,
1: और रात भर लगभग 12-1 बजे तक बिजली नहीं थी, तो
0: बिजली
1: घर
0: नहीं
1: में
0: थी।
1: बच्चे
0: जी
1: सो नहीं पाए, मेरे
0: जी
1: पिताजी हैं, नाना जी हैं,
0: जी
1: जिनका आयु बहुत है, वो भी
0: हाँ
1: सो
0: सर,
1: नहीं पाए, बहुत समस्याएं हुई उस दिन। तो
0: हाँ सर,
1: शासन को समय से पहले कुछ ना कुछ करना चाहिए, इस
0: सही है सर,
1: प्रकार ऐसे ही हम छोड़ देंगे तो काम नहीं चलेगा।
0: सही है सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे सुन के। काश
1: जी
0: आगे के टाइम पे आपको इतना दुविधा ना हो। जी सर, थैंक यू सर,
1: आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी हाँ, तो आज हम बहुत सारे किस्से सुने थे जहाँ पे थोड़े लोग बहुत खुश थे पहली बारिश को लेके, बहुत मस्ती करे हैं, पर थोड़े लोगों को दुविधा हुई है ये बारिश के पावर कट्स के वजह से, ट्रैफिक जाम के वजह से, वाटर लॉगिंग के वजह से। मैं भी सुनी हूँ कि मेरी खुद के घर में दे वेर पीपल हु वर स्टक इन द ट्रैफिक, और 2-3 घंटे तक वो घर नहीं पहुँच पाए क्योंकि ट्रैफिक इतना बुरा था और पानी भी पूरा भर गया था, कार्स के टायर्स तक की डूब रहे थे। तो दैट वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट रेन, फर्स्ट हैवी रेन ऑफ द सीजन। चलिए देखेंगे आगे वक्त कैसा होगा। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हो रेनबो FM 101.9। मैं हूँ आपकी अपनी RJ निधि।

0: हेलो रेनबो पे आप सबका वापस से स्वागत है। मैं हूँ आपकी आरजे निधि और आप सुन रहे हैं रेनबो एफएम 101.9। अभी हमारे साथ एक लिसनर जुड़ गए, चलिए उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। हेलो।
1: हरिओम।

0: శ్రీ చైతన్య విద్యా సంస్థలే.
1: FM Rainbow 101.9.

0: 101.9 స్టూడియో క్లాక్ సమయం 4:03 దాటి 50 సెకండ్లు అయింది. ఇప్పుడు వినండి సందేశ్ టు సోల్జర్స్.
1: జా బాజ్ యోగదాన్ ఉస్ కాంట్రిబ్యూషన్ కి బాత్ హమ్ యహాన్ కరేంగే సందేశ్ టు సోల్జర్స్ మే. ఆయే పూరే భారత్ కే సాథ్ స్వాగత్ కర్తే హై సెకండ్ ఇన్ కమాండ్ లలిత్ షాహజీ కా. ఆప్కా బహుత్ బహుత్ స్వాగత్ హై.
2: ధన్యవాద్. నమస్కార్.
1: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का उस फोर्स का हिस्सा हैं. आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है. SSB सशस्त्र सीमा बल बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की.
2: जी बिल्कुल. हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है. सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है. ये एक पोरस बॉर्डर है और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं. इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है और उस चैलेंज को SSB के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है. जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है.
1: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया. आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप SSB एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं. 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामढ़ी में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे. लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
2: ये स्कूल के दिनों की बात है. मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है. मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, CAPF बैकग्राउंड से ही रहे हैं.
1: जी जी.
2: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं. तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था. उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फोर्स में ज्वाइन कर लिया.
1: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में. लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है,

0: अगर मैं कहूं कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहां थी आपकी गांव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था, और किसने आपको प्रेरित किया?
1: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो
0: जी
1: स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था,
0: जी जी
1: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी।
0: जी
1: बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है।
0: ओके
1: 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया, 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था।
0: जी जी
1: तब हम आईटीबीपी को देखते थे, हमें सीआरपीएफ की
0: जी
1: जानकारी
0: जी
1: थी, बीएसएफ की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे।
0: जी
1: पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा, तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
0: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
1: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं। खास तौर पे भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं, और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है, और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
0: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का इन
1: जी
0: कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी,
1: बिल्कुल
0: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
1: बिल्कुल
0: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकता है इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
1: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से। दूसरा, अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम सीसीटीवीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है, हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं, उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पे खड़ा है वो उस चीज़ में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
0: राइट देन, तो आप अभी सीटीसी में हैं श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
1: बिल्कुल,
0: और किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहे
1: बेसिकली
0: हैं?
1: जो हमारा सीटीसी है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है,
0: जी
1: और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं।
0: ओके
1: उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं,
0: ओके
1: उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं, और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं।
0: जी,
1: जी
0: और जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
1: बिल्कुल, ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट

0: रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था
1: जी
0: तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट रही है, तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव
1: और
0: किया है।
1: आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं आप CTC में, ये कितने समय से हैं?
0: मेरे को अभी 1 साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर। ही इज सेकेंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक, क्योंकि ये प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
0: ऐ मेरे वतन के लोगों,
1: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है
0: बहुत प्रिय है,
1: और कोई खास वजह?
0: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिबली रहता ही था,
1: जी,
0: तो दिल को छूता है ये सॉन्ग।
1: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स, जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल एज फार एज द प्लेबैक सिंगिंग इज कंसर्न, द लेट द लेजेंडरी लता मंगेशकर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहाँ तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहाँ सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूँगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई। बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से। तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से

0: वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना,
1: जी
0: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना, और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने, और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ,
1: जी
0: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स
1: जी
0: हैं, जो
1: जी
0: इस तरीके के कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है, तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला, और किस तरीके से रोकना है अपने।
1: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है,
0: जी
1: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो
0: बिल्कुल
1: यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है,
0: जी
1: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
0: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्योर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, इसके लिए भी चुना गया है, तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया, और हम लोगों ने उस जिस ज़िले में हम लोगों को दिया गया था उस ज़िले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
1: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, जामताड़ा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड ज़िले हैं 1990 के समय से ही। और जब हमारी मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है, और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर की, अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे, तो इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई, और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं, और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
1: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा, ये नक्सलवाद वहाँ पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा, बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से, बातों का जो सिलसिला है उसे रखकर कोई चीज़ सॉल्व कर सकें?
0: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इन्फॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत
1: ये
0: कार्य
1: सब
0: किया,
1: एसएसबी कर रही है?
0: बिल्कुल एसएसबी कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी यू नो

0: काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा, तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है।
1: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार, हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ,
0: जी
1: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीज़ों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं। उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नज़दीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहाँ पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
0: जी
1: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे हैं कि आप बनाइए। जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे, विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा। ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
0: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना इतने सालों तक रहा, कुछ आपको आइडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
1: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज़ है। 90 का दशक है, वहाँ पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको उसको मार देते थे,
0: पनिशमेंट
1: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे सादे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूँ संथाल
0: जी
1: परगना में,
0: जी
1: बहुत सीधे सादे लोग
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुँचने नहीं देते थे,
0: जी
1: पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया। और यही इसी से नक्सलवाद वहाँ पे बढ़ा शुरू में, फिर इन्होंने कोई भी चीज़ के उसमें बैरियर लगा दिया। आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे, तो डर भी एक चीज थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद की तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
0: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूँगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, या आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
1: हाँ मैं जरूर बताता हूँ, थोड़ा सा और मैं इसमें
0: जी
1: जोड़ना
0: जी
1: चाहूँगा कि
0: प्लीज़।
1: किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए, नाम लेना चाहूँगा मैं उनका। हमारे आईजी सर थे श्री संजय कुमार, हमारे डीआईजी सर श्री सुमित जोशी, हमारे कमांडेंट सर परीक्षित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी थे श्री YS रमेश, उसके अलावा CRPF के जो ASP ऑफ्स थे इमानुल बास्की और RC मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई,
0: जी
1: और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से, अपने ही लोगों से एक
0: जी
1: स्मॉल एक्शन टीम करके
0: जी
1: बनाई। और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब। तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट, जो टैक्टिकल इंट थी। तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने

0: जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी, उससे हमें बहुत फायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो
1: प्रेपरेशन.
0: प्रैक्टिसेस हैं, जो
1: जी
0: हम
1: जी
0: लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे,
1: ओके
0: हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की,
1: जी
0: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए।
1: ओके
0: और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वंडरफुल. तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है. लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी. शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो, झारखंड जैसे एरिया में थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो. तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी.
0: बिल्कुल, आतंक का पर्याय थे ये नक्सली। ये नक्सलियों, लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47, इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे ज़बरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया, तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के, और वो बैरियर तोड़ दिया। SSB ने वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है. तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी, तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए.
0: बिल्कुल, ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी,
1: जी
0: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्य शैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एक
1: जी
0: कंपटीशन है और एक पॉजिटिव कंपटीशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहाँ पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। और
1: और वो मेरे ख्याल से ऐसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हम उनको कैसे ग्रूम करें आगे जाके.
0: बिल्कुल
1: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी CTC में, जो ट्रेनिंग आप दे रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं.
0: हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है
1: जी
0: ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
0: ऑल इंडिया,
1: लगभग
0: हमारे उसमें
1: सभी.
0: सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है,
1: जी
0: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है, तो बहुत अच्छा
1: और मेरे ख्याल
0: है।
1: से आप ट्रेनर हैं, तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो SSB में, क्या खींच कर लाया आपको SS, कुछ ऐसे ही मेरे
0: बिल्कुल
1: अंदाज में तो नहीं, आपके अपने अंदाज में.
0: बिल्कुल, हम पूछते हैं उसके कहाँ से वो आया है,
1: जी
0: उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है,
1: जी
0: हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है,
1: ओके
0: उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की ज़रूरत है, कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिस को।
1: राइट देन मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का. दोस्तों आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकंड इन कमांड हैं SSB के ललित शाह जी. कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने,
0: बिल्कुल
1: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में.
0: बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं,
1: जी
0: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में, और
1: पिथौरागढ़ में अरेंज्ड ही होती होंगी
0: बिल्कुल.
1: हमारे दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद विद द नेशन. आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था. तो आपकी वाइफ जब आप

0: आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं
1: हाँ
0: शादी से
1: बिल्कुल,
0: पहले?
1: हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसके बाद एक एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है। तो जब पाता, लड़की का पाता आता है, मतलब पतरा जो आप वो
0: जी पत्र,
1: कहिए,
0: ओके
1: तो वो आता है, तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और
0: ओके
1: वो मिल जाता है तो उसके बाद वो शादी फिक्स हो जाती है। तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
0: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो।
1: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की जरूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितने जल्दी इस चीज़ को

0: जानने की जरूरत है। पर मेरी वाइफ ने जितनी जल्दी इस चीज़ को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। हम मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा,
1: जी
0: अलग
1: सर
0: अलग जगह
1: जी
0: ड्यूटीज़ की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
1: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियाँ भी हैं,
0: जी
1: तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फ़र्क आ गया है,
0: जी
1: मॉडर्न पढ़ाई है, और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं। तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का या?
0: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं। बहुत छोटी हैं तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
1: जी
0: वो
1: जी
0: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है। बट मैंने ज़रूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं। तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल
1: जी,
0: हो जाए।
1: आपकी SSB में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है,
0: बिल्कुल
1: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स।
0: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं। और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बढ़ाने जा रही है। और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज़ के लिए। वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं। उनकी सोचना समझना, उनका तरीका बहुत अलग रहता
1: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा है, पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुंह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है ललित शाह जी, तो एक जनाब हैं दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड,
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास
0: जी,
1: ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस, ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
0: ओके।
1: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे
0: जी,
1: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: मैंने मशीन खोली है, तो देखिए आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होकर हम लिखते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूँ, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज़ ऑन एआईआर के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज़ ऑन एआईआर ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहाँ पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और हैं सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं सीटीसी एसएसबी श्रीनगर से हूँ, सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
1: थैंक यू।
0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं। महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन अच्छा। लिख रहे हैं, आप पहचान गए होंगे
1: जी।
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद, विजय कुमार जी हैं वहां से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर, यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों?
1: धन्यवाद है यश का।
0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
1: जी।
0: अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज़ ऑन एआईआर के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे।

0: चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूँ ललित सर का, सही कह रहे हैं सर
1: जी
0: ऑलराइट। यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है। दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी, जय हिंद बाबूलाल।
0: ऑलराइट को मैसेज सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है। एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन विमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे,
1: बिल्कुल
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं,
1: बिल्कुल
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहाँ पे देते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही मैंने जो देखा है कि दोनों ही चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं। महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सेलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं।
0: ओके,
1: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है, अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है, बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है और जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को। और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं। जी
0: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है,
0: बट सुझाव अच्छा है,
1: बहुत अच्छा सुझाव है और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसमें आप लोगों में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फर्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है जो पुलिस की टैक्टिस है जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है, और हमारा जो पाठ्यक्रम है हमको ANO नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं, उसके अलावा उन्हें JNK हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे।
0: ऑलराइट, TPT सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका प्रोग्राम सुन रहा है।
1: जी मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे।
0: ओके
1: जी,
0: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है।
1: बिल्कुल।
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
1: जी।
0: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं धर्म भाटिया रोहतक से। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे कि अब आगे के जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में, मैं ये नहीं कह रहा कि SSP सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है, और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग, और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके
0: जी,
1: उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पे आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रखें।

0: तो यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, नहीं कि कम्प्लीटली. लोगों को लगता है कि यार आपने कम्प्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया, एआई का जमाना आ गया. आप लोग एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं एसएसबी में?
1: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं, बट यह है कि एआई के अपने भी कौनस हैं, उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही.
0: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में. ठीक है, आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नजर तो जरूर रखते होंगे.
1: बिल्कुल नज़र रखते होंगे और उन पे हम भी नज़र रखते हैं, नज़र दोनों ही तरफ से रखी जा रही है. और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नज़र रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी
0: तो
1: हुई है.
0: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
1: हम भी तैयार हैं, बिल्कुल
0: चौकन्ने हैं.
1: बिल्कुल
0: सीटीसी श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट ममना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं. तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है.
1: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद.
0: महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहाँ आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं. एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ अच्छा लगेगा.
1: धन्यवाद.
0: ऑल राइट, 29th SID से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम जरूर लिखें. अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं, हम सबकी तरफ से हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें. समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं. और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं और सत्यमेव जयते जो ये एक वाक्य है इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें, सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है. जय.
0: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से. बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूँ, कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा. साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहाँ से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को. शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है, महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश. लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं.
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूँ.
0: अच्छा.
1: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था, और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहां जा रहा हूं जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूं.
0: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं. किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं?
1: नहीं, बस यही गाना मैं गा लेता हूं जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता है.
0: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर गुनगुना सकते हैं
1: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है.
0: Right then, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ. आप हैं तो हम हैं, 90 साल 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM रेनबो 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपेश है प्रोग्राम नैरंग।

0: आइए दोस्तों, प्रोग्राम नरंग का आगाज़ करते हैं हरफे ताबिंदा से। तहरीर और पेशकश है नूर अफशां की।
1: खुशी एक ऐसा जज्बा है जो इंसान की ज़िंदगी को खूबसूरत, पुरमसरत और काबिल क़द्र बनाता है। ये दिल की एक ऐसी कैफियत है जो सुकून, इत्मीनान और मसरत से ताल्लुक़ रखती है। दुनिया में हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो खुश रहे और अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाए। खुशी का ताल्लुक़ सिर्फ मादी चीज़ों से नहीं होता, बल्कि ये एक रूहानी और ज़हनी कैफियत है जो इंसान के तर्ज़ो फ़िक्र, रवैयों और ताल्लुकात से जुड़ी हुई होती है। खुशी एक ऐसी हालत का नाम है जब इंसान ख़ुद को मुकम्मल महसूस करता है। यह एहसास दिल में पैदा होता है जब इंसान को अपने आमाल, ताल्लुकात और हालात से इत्मीनान हासिल हो। बाज़ औक़ात छोटे छोटे काम, जैसे कि किसी की मदद करना, किसी की मुस्कराहट का सबब बनना, कुदरत की खूबसूरती को महसूस करना, इंसान के दिल में खुशी की लहर पैदा करता है। खुशी के ज़रिए हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होते हैं। कुछ लोग दौलत और शोहरत को खुशी का ज़रिया समझते हैं, लेकिन ये खुशी वक्ती होती है। असल खुशी इन चीज़ों में छुपी है जो दिल को सुकून बख्शती है। सच बोलना, इबादत करना, वालिदैन की खिदमत करना, किसी की मदद करना, इंसान को अंदरूनी खुशी अता करती है। मुखलिस दोस्त, प्यार करने वाला ख़ानदान और पुरअमन माहौल इंसान के लिए खुशी का बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं। जो शख्स हर हाल में बेहतरी तलाश करता है, वो हमेशा खुश रहता है। खुशी को ख़रीदा नहीं जा सकता। अमीर लोग भी अक्सर ज़हनी दबाव और परेशानियों का शिकार होते हैं, जबकि बाज़ गरीब लोग भी इंतहाई मुतमईन और खुशबाश होते हैं, क्योंकि इनके दिल में क़नाअत और शुक्र का जज्बा होता है। खुश रहने वाला शख्स बेहतर फ़ैसले कर सकता है, दूसरों से अच्छे ताल्लुकात रख सकता है और ज़्यादा मेहनती होता है। बीमारियों से वो महफूज भी रहता है। एक खुशबाश इंसान माशरे के लिए मुसबित किरदार अता करता है। खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि सफ़र है। ये ज़िंदगी के हर लम्हे में छुपी होती है। बस हमें इसे महसूस करने का हुनर आना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी में शुक्र, सब्र, मोहब्बत और क़नाअत को जगह दें, तो खुशी हमारे कदम चूमेगी। सादा ज़िंदगी, मुखलिस ताल्लुकात और नेक अमल ही वो ख़जाने हैं जो हमें असल खुशी अता करते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे हरफ़े ताबिंदा सिलसिले तहत नूर अफशां की पेश करदा टॉक।

किलोमीटर फासला तय करती है, यानी एक मिनट में रोशनी 3,60,000 किलोमीटर फासला तय करती है। इस तरह रोशनी एक घंटे में 3,60,060 किलोमीटर फासला तय करती है और एक दिन में 3,60,060,024 किलोमीटर फासला तय करती है। लिहाजा एक साल में रोशनी दर्जा ज़ैल फासला तय करती है।

रोशनी दर्जा ज़ैल फासला तय करती है, जिसको नूरी साल कहते हैं। 3 लाख ज़रब, 60 ज़रब, 24 ज़रब, 365 किलोमीटर। दूधिया रास्ता वो कहकशां जिसमें हमारा निज़ाम शम्स वाक़े है और जिसमें में ज़मीन में एक सैारे के तौर पर शामिल है। दूधिया रास्ता मिल्क वे कहलाती है। ये कहकशां तारीकी रात में आसमान पर एक सफ़ेद मुनव्वर पट्टी की शक्ल में दिखाई देती है। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि माहिरिन फलकियात के लिए खुद हमारे इस कहकशां के बारे में सही सही तौर पर जानना खासा मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए इस निज़ाम के अंदर मौजूद रहते हुए ठीक ठीक मुशाहिदा करना आसान नहीं। मुनासिब हालत में और अंधेरी रात में, जबकि मतला साफ हो, दूधिया रास्ता आसमान पर एक बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करता है। इसकी रोशनी में करोड़ों सितारों की रोशनी शामिल होती है, लेकिन इसमें हर सितारे की रोशनी इस कदर मद्धम होती है कि इसको सादा आँख से देखना मुमकिन नहीं होता। दूधिया रास्ता खरसा डिस्क की शक्ल में ऐसी कहकशां है जिसको खतर तकरीबन 1 लाख नूरी साल से इस दूधिया रास्ते की हैत एक पतले महद्दब अज्सा की सी है, जिसके दरमियान उभार की अजीम तरीन मोटाई तकरीबन 10,000 नूरी साल है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे निज़ाम शमसी गोया इस कहकशां के इस्तेवाई इलाके में अंदर की जानिब वाक़े है। ये भी मालूम हुआ कि हमारी ये कहकशां घड़ी की सुइयों की सिमत में घूम रही है। निज़ाम शमसी कायनात में निज़ाम शम्स हमारा मस्कन है। इसमें छोटी सी छोटी अशिया से लेकर बड़े बड़े कुर्रे शामिल हैं। निज़ाम शम्स 9 बड़े सैारों पर मुश्तमिल है, जिनके नाम हैं अतारो, जहरा, ज़मीन, मिर्ख, मुश्तरी, जहल, यूरनस, नीचोन और प्लूटो। इनके अलावा इसमें 51 ऐसे तवाब चांद मोन्स भी शामिल हैं, जिनका अब तक पता लगाया जा चुका है। सैारे ऐसे फलकी अज़्ज़ाम हैं जो बजाय खुद एक छोटे पैमाने पर निज़ाम शम्स के मनज़र पेश करते हैं, निज़ाम शम्स में मौजूद सैारों को सूरज से इनके फासले की बुनियाद पर दो ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। सूरज से करीब वाक़े दो सैारों अतार्द और ज़हरा को एक ग्रोह, और सूरज से ज़्यादा फासला रखने वाले सैारे जो मिर्ख और इसके बाद वाक़े हैं, इनको दूसरे ग्रोह में बांटा गया है, जिनको तरतीबदार अंदरूनी और बैरूनी सैारे कहा जाता है। जैसे जैसे सूरज से फासला बढ़ता जाता है, इन सैारों की गर्दिश रफ्तार घटती जाती है। वो रास्ता जिन पर सैारे सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं, मदार, ऑर्बिट कहलाता है। आमतौर पर ये रास्ते मदूरी होते हैं, सिवाय सैारे अतार्द और प्लूटो के, जिनके मदार बैजवी है। सितारों में हमारे सूरज को कोई ख़ास अहमियत हासिल नहीं है, क्योंकि ऐसे बेशुमार सितारे हमारे कहकशां दूधिया रास्ते में मौजूद हैं। मगर सूरज हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिस सैारे पर हम रहते हैं, बसते हैं, वो ज़मीन है, और ये ज़मीन सूरज के अतराफ गर्दिश कर रही है। सूरज ज़मीन के लिए रोशनी और हरारत फरम करता है, जिसकी वजह से ज़मीन काबिल रिहाइश हो गई है। सूरज आसमान पर सबसे ज़्यादा नुमाया तौर पर नज़र आता है। इसका खतर तकरीबन 1.4 मिलियन किलोमीटर है, और ज़मीन से इसका फासला 150 मिलियन किलोमीटर है। इसकी औसत कसाफत 1.4 ग्राम फी मुआक्किब फिट है। इसकी सतह का दर्ज हरारत तकरीबन 6,000 दर्जे सेल्सियस यानि 10,000 दर्जे फारेनहाइट से ज़्यादा है। हकीकत तो यह है कि सतह ज़मीन को हम जिन माने में इस्तेमाल करते हैं, इन मानी में सूरज को सूरज की कोई सतह ही नहीं है। ताहम सूरज का दिखाई देने वाला हिस्सा, जो इंतहाई गर्म है और गैसों पर मुश्तमिल है, सतह सूरज कुर्रे-ज़ियाई के नाम से जाना जाता है। ये शमसी फिजा से घेरा हुआ है। कुर्रे-ज़ियाई शमसी दानों, ये दाने उबलते हुए पानी पर बुलबुलों के मानिंद होते हैं। बाज़ औक़ात नामालूम वजूहात की बिना पर सूरज का एक छोटा सा इलाका ठंडा पड़ जाता है, जिससे वो इलाका सियाह नज़र आने लगता है। ऐसे सियाह हिस्सों को शमसी धब्बे, सन स्पॉट्स कहा जाता है। सूरज के बाद शमसी धब्बे हमारी ज़मीन के जसामत से भी कई गुना बड़े पाए गए हैं। अगरचे सूरज की ये इलाके निस्बतन ठंडे होते हैं, फिर
फिर भी इनका दर्जे

कहते हैं कि इंसान वक्त समय टाइम को जिस अंदाज में गुजारते हैं वही इंसान का मुस्तकबिल फ्यूचर तायुन करता है। इंसान का ज़मीन से गहरा ताल्लुक़ है जो हमेशा वक्त की गिरफ्त में रहता है। वक्त की लहर अपनी ही रफ्तार से चलती है। हम

गुजरते हुए पलों को महसूस करते हैं और हर आने वाला पल कीमती और लासानी होता है। आइए दोस्तों सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म गोलमाल से। इस फिल्म के गीत को गाया था किशोर कुमार ने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म गोलमाल से लिया गया ये गीत। दोस्तों, हम देखते हैं कि वक्त कभी खुशगवार होता है, कभी कठिन, कभी मुतहरिक, तो कभी बिल्कुल वक्त थम जाता है। वैसे वक्त गुजर जाता है, वक्त रुकता नहीं। किसी मुफक्किर ने इन्हीं लम्हों पर कहा था, दिस टू शेल पास, ये भी गुजर जाएगा। इसीलिए वक्त को बहता हुआ दरिया भी कहा गया है। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और गीत जिसको लिया है हमने फिल्म ब्लैकमेल से।

फिल्म ब्लैकमेल से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी में वक्त की बड़ी अहमियत होती है। जो वक्त को बेहतर इस्तेमाल करते हैं, इनके नतायज भी खुशगवार होते हैं और मुकद्दर भी इनका शानदार होता है। चाहे नसीब व फराज हो, लेकिन वक्त का ये बेहतर इस्तेमाल करते हैं तो नसीब भी इनका साथ देता है। आइए इसी पर सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। इस फिल्म के गीत को गाया था किशोर कुमार जी ने। आइए सुने।

फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों हम बात कर रहे हैं वक्त की, पर वक्त फानी है, वक्त पोशीदा है, हर लम्हा दूसरे लम्हे में तब्दील हो रहा है। वक्त को उसके मुख्तलिफ रूपों में हम देखते हैं। वैसे कहा जाता है कि जिंदगी में वक्त की बड़ी अहमियत होती है और साथ में जिंदगी के हर पल को खुशी से गुजारने की तरकीब भी दी जाती है और एक फलसफा भी रहता है कि वक्त को और कठिन हालात को मुस्करा कर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसको लिया है हमने फिल्म सौतन से। इस फिल्म के गीत को गाया था लता मंगेशकर जी ने। आइए सुने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सौतन से लिया गया ये गीत। वक्त अपने साथ मौके अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर लाता है, और मौके इंसान को मनसूबाबंदी की तरफ राग़िब करते हैं और ख्वाब देखने की तरफ राग़िब करते हैं। और वक्त के साथ ये मुमकिन हो पाता है कि हम अपने ख्वाबों को पूरा करें और अमली शक्ल इसे दें। इसलिए ख्वाब ज़रूर देखना चाहिए, और साथ ही ज़िंदगी में आने वाले अच्छे मौक़ों को ज़रूर इनसे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। इसी से ज़िंदगी खुशगवार होती है, और साथ ही ज़िंदगी में खुशियाँ

बिखेर जाती है। आइए सुनते हैं एक ऐसा है कि जिसको लिया है हमने फिल्म मशाल से। इस फिल्म के गीत को गाया था किशोर कुमार जी ने, गीतकार है जावेद अख्तर और संगीत से इसे सजाया था हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

फिल्म मशाल से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, जब इंसान अपनी ज़िंदगी को मुड़ कर देखता है तो इसे गुजरा हुआ वक्त ज़रूर याद आता है, और गुजरे हुए वक्त में बिताए हुए खूबसूरत पल उसे ज़रूर महसूस होते हैं। और इनमें आता है सफ़र यानी ट्रैवल में गुजरा हुआ वक्त, और सफ़र की यादें ना सिर्फ इंसान को एक खुशी का लम्हा देती है, बल्कि ये यादों से ये महसूस भी होता है, और उन यादों को अक्सर और बेशतर वो ज़रूर याद करता है। आइए सुनते हैं इसी पर एक गीत जिसको लिया है हमने फिल्म गुलामी से। इस फिल्म के गीत को गाया था लता मंगेशकर जी और शब्बीर कुमार ने।

फिल्म गुलामी से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें ज़िंदगी में मौके की, अपॉर्चुनिटीज़ की, वक्त के साथ मौके जिनसे छूट जाते हैं या मौके को वो बरूए कार ना लाते हुए नाकाम हो जाते हैं, तो अक्सर बेशतर वो उम्मीद खो बैठते हैं। लेकिन उम्मीद थामे रखना चाहिए और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। एक उम्मीद इंसान को रागिब करती है कि वो दोबारा अपनी कोशिश ज़रूर करें, और वक्त इन्हें ज़रूर दोबारा एक नया मौका ज़रूर देता है। इसलिए

कहते हैं कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म मिस्टर इंडिया से। इस फिल्म के गीत को गाया था किशोर कुमार जी ने। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीत से इसे सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

फिल्म मिस्टर इंडिया से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों, वक्त के लम्हों को खूबसूरत बनाते हैं दोस्त, और जब किसी की ज़िंदगी में दोस्त होते हैं तो वो ज़िंदगी के

जब किसी की ज़िंदगी में दोस्त होते हैं तो वो ज़िंदगी के खुशगवार लम्हों में इनका वक्त गुजरता है, और इन लम्हों को ना सिर्फ ये जीते हैं बल्कि ज़िंदगी में दोस्त रंग बिखेर देते हैं। लीजिए सुनिए इस पर एक गीत जिसको लिया है हमने फिल्म राम लखन से। इस फिल्म के गीत को गाया है मोहम्मद अजीज़, अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश ने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म राम लखन से लिया गया ये गीत। वैसे दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी के हर पल को जीने का जज्बा होना चाहिए। ये जज्बा इंसान को ना सिर्फ मुतहर्रिक बनाता है, बल्कि इसके अंदर एक उम्मीद भी पैदा करता है। जीने का जज्बा ना सिर्फ इंसान को एक ख्वाब की तरफ ले जाता है, बल्कि एक कामयाबी का रास्ता ज़रूर बताता है। इसीलिए ज़िंदगी के हर पल की कदर करनी चाहिए और इसे मुकम्मल जीना चाहिए। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म कहो ना प्यार है से। इस फिल्म के गीत को गाया है लकी अली ने, संगीत से इसे सजाया है राजेश रोशन ने। आइए सुने।

फिल्म कहो ना प्यारे से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों हम बात कर रहे थे वक्त पर, आज वक्त पर हमने बात की और वक्त के बेहतर इस्तेमाल और वक्त को हम किस तरह याद करते हैं और वक्त को किस तरह हम को इस्तेमाल करना चाहिए इस पर हमने गुफ्तगू की थी। वैसे वक्त का ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है, इसी से ज़िंदगी में खुशियाँ आती है और वक्त के साथ इंसान में बदलाव आता है। एक नई कोशिश इंसान ज़रूर करता है अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। आइए सुनते हैं आखिरी गीत जिसको लिया है हमने फिल्म रंगीला से। इस फिल्म के गीत को गाया था आशा भोसले जी ने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत सुरीले गाते जा में कुछ सुरीले गीत। प्रोग्राम नारंग के आखिर में आइए सुने बयां में शब, पेश कर रहे हैं सैदी।

0: कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं कोई बेवफा नहीं होता, बेवफाई जिंदगी का एक कड़वा सच है, मगर ये हमें एक बड़ी सीख भी देती है। जो शख्स आपका ना हो सका, उसके लिए दिल को जलाने के बजाय खुद की कदर पहचानिए। याद रखें, सच्ची मोहब्बत कभी धोखा नहीं देती, और जो दे जाए वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक आजमाइश होती है।
1: पैम शब के साथ दोस्तों आज का नया रंग प्रोग्राम अब अपने अख्ताम को पहुंचता है। इस उम्मीद के साथ कल शब 9:30 पर हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई बस में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM रेमो 101.9 MHz पर। कुछ ही देर में हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
3: The topic for the Governing Council meeting.
4: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री

0: मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Vikasit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and developed export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life, including education, health and employment.
3: The topic for the Governing Council meeting was Inclusive Human Development for Vikasit Bharat 2047. And it was about details. The states talked about what they're doing. Inclusive Human Development covers all the 4 stages of life, from childhood to youth to working life to old age. A skilled population is

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
1: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका।
1: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश हैं?
2: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूँ। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला। उनको बहुत बहुत बधाई।

0: क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
1: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
0: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
1: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा न चुनाव की बात, न मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
0: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
1: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
0: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
1: देखिए, एक तो संकट है
0: जिसको इतिहास याद रखेगा,
1: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे

0: निकालने का काम हुआ है, मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब किसान महिला नौजवान सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी सरकार।
0: मन के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन को?
0: हकीकत तो यही, जनता जान देखिए, हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, NDA शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इम्पोर्ट करते थे उस जमाने में, विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम राष्ट्र

0: हित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या एलपीजी के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूँ तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूँ। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काली देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए, कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे, एक, देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है, दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: अलनीनो के भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस

0: पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण हैं, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग हैं जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने AI के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया है उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी AI की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है, तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश इसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ, जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ। और वो चीज़ मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरे वेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: ।26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है, पूरी आधुनिक

0: के साथ में ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय। तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
1: धन्यवाद।
0: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं, वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
0: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहां किसी भी देश का, हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
1: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा विहार विश्वविद्यालय चल रहा है जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और बोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर

0: वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेनजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेज़ों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए। जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ। जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और ख़ासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ है, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5,000 वर्ष पुरानी साइट है। 5,000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी। तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी, और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे। और आज जब आप इस दौर में ही संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियाँ, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
0: देखिए, एक मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं, तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में पूर्व में भी जाता रहा हूँ।

और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है।

0: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे, और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे, और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
0: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

0: की बत्तियां मुझको है तड़पाती, लुटे कोई मन का नगर।
1: दोस्तों कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली

0: में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि पंचायती राज से संबंधित 4 पहल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चुने गए हैं। डिजिटल शासन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण व्यापक बनाने में ये ग्राम पंचायतों की बढ़ती भूमिका दर्शाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग द्वारा डिजिटल बदलाव श्रेणी में पंचायत उन्नति सूचकांक को स्वर्ण पदक दिया गया है। ये सूचकांक स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े संकेतकों के आधार पर देशभर की ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करता है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र के सांगली जिले की कड़ेपुर ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है, जबकि त्रिपुरा के पश्चिमी त्रिपुरा जिले की बिजॉय नगर ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायतों द्वारा जमीनी स्तर की पहल श्रेणी के अंतर्गत सेवा वितरण के लिए रजत पदक प्राप्त हुआ है। अगले महीने की 1 और 2 तारीख को राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच अब से कुछ ही देर में रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said, the theme covers all aspects of life including education, health and employment.
2: The topic for the Governing Council meeting was Inclusive Human Development for Viksit Bharat 2047. And it was about details. The states talked about what they are doing. Inclusive Human Development covers all the 4 stages of life, from childhood to youth to working life to old age. A skilled population is the key to success.
1: A tripartite memorandum of understanding MOU was signed between the centre and the governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas along the Assam-Nagaland border. The MOU was signed in New Delhi in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Nagaland Chief Minister Nephew Rio. Speaking on the occasion, Mr. Shah termed it a historic moment as this initiative will enhance the prospects of oil and natural gas exploration and opens up possibilities for mineral mining as well. India strongly condemned the recent attack on a Palau-flagged tanker MT Setebalo off the coast of Oman in which 3 Indian nationals lost their lives. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal

किसी के रहना, लेकिन खुद को खुद से दूर न रखना। रेगिस्तानों में उगते हैं अनबोए कांटों के जंगल, भीतर एक नदी होगी तो कल कल होगी हलचल। जो प्यारे सदियों के बंधक, अब उनको मजबूर न रखना। साथ किसी के रहना, लेकिन खुद को खुद से दूर न रखना। तो बात बस इतनी सी है कि किसी और के प्यार और उसकी चाहत में खो जाना तब तक ठीक है जब तक आपकी खुद की पहचान न खोने लग जाए। और यकीन मानिए, जो आपको खुद से दूर कर दे वो कभी आपका था ही नहीं। लेकिन हम यानी FM गोल्ड हर पहर, चाहे दिन हो या रात, हर पल है आपके साथ। और हमारा ये साथ हमेशा यूं ही रहे बरकरार, इसी ख्वाहिश के साथ मैं यानी नाज करती हूं आपको

यहां हर सल्तनत है तेरी, हर सुल्तान है तेरा, इधर इंसान है तेरा, उधर भगवान है तेरा, जमीन से आसमां तलक हर जगह गुणगान है तेरा। ये दुनिया चल रही है अब तलक मेरी जान, ये एहसान है तेरा, और तेरे होने से ही तो ये है कुदरत, तो इसकी शान रखा कर, बहलाने वालों को तू ना कहने का ईमान रखा कर, सही है कौन गलत जरा ये पहचान भी रखा कर, और आखिर में बस एक गुजारिश है कि तू अपना ध्यान रखा कर।

कभी कभी सिर्फ एक इंसान आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है। वो आपको दिखाता है आपकी अच्छाइयां और आपकी गलतियां भी, दोनों को बिना किसी मिलावट के। और आपकी मुलाकात करवाता है वो आपके अंदर के उस इंसान से जिससे तो आप कभी मिले ही नहीं थे।

जनाब, जिंदगी में कभी कहीं भी कोई ऐसा मिल जाए ना, तो उसे जाने मत देना, क्योंकि उसे आपके लिए आपने नहीं चुना है, बल्कि वो तो एक तोहफा है जो शायद आपकी तारीफ में उस ऊपर वाले ने भेजा है।

देखिए, हर रिश्ते में बहस होती है, गलत फहमियां भी होती हैं, कभी कभी मन भर भी जाता है, एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। लेकिन जो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो छोड़ने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कभी कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, और जिसे परफेक्ट होना चाहिए वो है उस रिश्ते को निभाने का इरादा।

है ना? पता है मैं उन बातों को अब किसी और के साथ बांट भी नहीं पाती। लोग मिलते हैं मुझे, पर मैं उनसे ठीक से मिल भी नहीं पाती। सुनो, तुम लौट आओ ना किसी बहाने से, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बांटना है तुम्हारे साथ।

मैं कभी कभी सोचती हूँ उन बातों के बारे में जो रह गई तुम्हारे और मेरे बीच। हम साथ होते तो कितनी बातें

कल देर तक सोएंगे, ये सोचकर पूरे सप्ताह की थकान उतर जाती है ना? आपके साथ भी होता है ऐसा? पर अफसोस, जिस दिन सोने की आजादी हो उस दिन, खासकर उस दिन, ढंग से नींद कहाँ आती है।

उसकी आंखों से खूबसूरत और क्या ही होगा, उसकी आंखों से खूबसूरत और क्या ही होगा जिससे हमें मोहब्बत है। तो कहना है मुझे तुमसे कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज मिल जाएं, तो क्या खाक खूबसूरत है तुम्हारी आंखें।

चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। और पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें।

रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब तो बता मनाने की। हम खुद को गिरवी रख देंगे, तू कीमत तो बता मुस्कुराने की।

आंखों की दहलीज पर आकर बैठ गई, तेरी सूरत ख्वाब सजा कर बैठ गई, और कल तेरी तस्वीर मुकम्मल की मैंने, फौरन उस पर एक तितली आकर बैठ गई।

उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे हम मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुजदिल के पहले सफ में खड़े मिलेंगे। और अब हम मिलेंगे ठीक 1:10 पर। उससे पहले आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों के किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में वैश्विक विकास शिखर सम्मेलन की आभासी बैठक

0: में भाग लिया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने कुशल वैश्विक ढांचे पर आधारित संतुलित विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज परस्पर जुड़ी दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां दोनों साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता के परिणाम विकासशील देशों और औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ेपन का सामना कर रहे ग्लोबल साउथ देशों पर असमान रूप से पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे उबरने में समन्वित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक लचीली, समावेशी और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थापित करने और साझा विकास के साझा समाधान आगे बढ़ाने के लिए सभी भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला हो रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक मैक्सिको एक गोल की बढ़त बना चुका था। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on One District, One Product initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life including education, health and employment. A tripartite memorandum of understanding MOU was signed between the centre and the governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas along the Assam-Nagaland border. The MOU was signed in New Delhi in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Nagaland Chief Minister Naifiu Rio. Speaking on the occasion, Mr. Shah termed it a historic moment as this initiative will enhance the prospects of oil and natural gas exploration and opens up possibilities for mineral mining as well. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Uttarakhand starting today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has said that the horticulture production in the country is expected to be about 3,778 lakh tons in 2025-26, showing an increase of 70.39 lakh ton over 2024-25. According to the second advance estimates of 2025-26 of area and production of various horticulture crops released by the ministry, horticulture cultivation area in the country is likely to reach 301.51 lakh hectare in 2025-26, showing an increase of 0.14 lakh hectare over 2024-25. According to the advanced estimates, fruit production is also expected to be over 1,214 lakh tons due to increased production of banana, mango,

मैंने चांद पर कुछ लिखा है, तुम चुपके से पढ़ लेना। तुम कुछ मत कहना, मैं सब समझ जाऊंगी। तुम शाम को याद करना, मैं रात सपने में जरूर आऊंगी। और इन दिनों अपनी ही हरकतों पर हंसी आती है मुझे, बस एक यही तो बहाना है जिस पे हंसी आती है मुझे। और तुम दूर हो या पास, ये बात कोई मायने नहीं रखती। मैं देख चुकी हूं खुद को तुम्हारी आंखों में, अब मैं अपने घर में आईना नहीं रखती। और इस बात के साथ मैं यानी नाज करती हूं आपका स्वागत। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 1:11:58। और आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और यहाँ बातों का सिलसिला आगे बढ़े उससे पहले एक शेर और सुनते जाइए कि उसके चेहरे की चमक के सामने सब कुछ सादा लगा। उसके चेहरे की चमक के सामने सब कुछ सादा लगा। आसमां पे चांद पूरा था, मगर हमें आधा लगा।

सच है ना कि जब महबूब का साथ हो तो कुछ भी आधा अधूरा नहीं लगता, एक सिर्फ उसके होने भर से सब कुछ पूरा हो जाता है। और दिल से बस यही अल्फाज निकलते हैं कि न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, बस हर पल तू मेरे साथ रहे, बस यही तो है मेरी ख्वाहिश।

सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं, वो सुनना चाहें जुबां से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजरों से बतियां। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, क्या है ये इश्क? सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें और तड़पती छतियां।

सच ही तो है, ये रात, ये मौसम, सब कुछ बहुत खूबसूरत और प्यारा प्यारा सा हो जाता है जब महबूब का साथ मिल जाता है। और यही जज्बात बशीर बद्र साहब क्या खूब बयां करते हैं कि रात आंखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए, ये रात आंखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए, और मेरा आईना भी अब मेरी तरह पागल है, आईना देखने जाऊं तो नजर तू आए।

कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, जो हम करते तो किसी और से हैं, लेकिन हकीकत में वो बात हम खुद से कह रहे होते हैं। अब जो अगला गीत आप सुनने वाले हैं, वो भी कुछ ऐसी ही बात कहता है कि मैंने कब चाहा था कि मुझे चांद सी महबूबा मिले, पर सच में जैसी मैंने चाही थी तुम बिल्कुल वैसी ही हो। और ये खूबसूरत बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने, और बेहद सादगी और मासूमियत के साथ गाया है मुकेश जी ने।

ये जिंदगी आखिर है क्या? एक मुकम्मल इश्क की तलाश ही तो है। तेरा इश्क है मेरी आरजू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, दिल इश्क है, जान इश्क है, और ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है। साहिर लुधियानवी साहब के ये खूबसूरत बोल आइए सुनते हैं। साल 1960 में आई फिल्म बरसात की रात से एक और बेहतरीन गाना और संगीत है रोशन साहब का।

इतना मजबूर न कर कि बातें बनाने लग जाएं, हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाएं। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने कि अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं।

ये आवाज आखिर होती क्या है? वो जो किसी एक से किसी दूसरे तक पहुंचती है, तो वो आवाज तो कुछ भी हो सकती है। वो किसी की लिखाई में हो सकती है, वो किसी की बात में हो सकती है, या फिर किसी एहसास में भी तो हो सकती है, या फिर किसी के जज्बात, वो भी तो उसकी आवाज ही हो सकते हैं। गुलजार साहब ने ठीक इसी आवाज का जिक्र इस गाने में किया है दोस्तों, जो अब आप सुनने वाले हैं, और बखूबी उस आवाज को हम सब तक पहुंचाया है लता जी ने। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, मोहब्बत इतना नाजुक एहसास है कि जिसमें इजाजत का शामिल होना बेहद जरूरी हो जाता है। हम जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे पर हक होता है, मगर उस हक को जता देने से अक्सर सब कुछ खत्म हो जाता है। मगर हम अगर याद रखें कि इस हक को कमाया कैसे जाए, तो यकीनन रिश्ता बेहद खूबसूरत और मजबूत हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे इस गीत में हसरत जयपुरी साहब बोल रहे हैं। फिल्म जंगली का ये बेहद खूबसूरत गीत जो अब आप सुनने वाले हैं, इसमें संगीत है शंकर जयकिशन का और रफी साहब की आवाज वाकई सब कुछ कह जाती है।

इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? ये जानने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? जिसको खोने का सबसे ज्यादा डर हो, बस वही तो है वो। सब कुछ अच्छा है, वो साथ भी है, लेकिन फिर भी दिल में एक डर है कि कहीं वो आंखों से ओझल हो गया तो। इन्हीं जज्बात को

सुरों में बांधे कार्यक्रम का अगला गीत अब आप सुनेंगे फिल्म असली नकली से। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, कानों में मिसरी खोलती मीठी आवाज लता जी की।

ये रात आती है तो आसमां सज जाता है, तारों की महफिल में ये दिल बहल जाता है। दिन की सारी थकान मिट जाती है ऐसे जैसे कोई लोरी गाकर सुला जाता है। तो चलो अब आंखों में कुछ नए ख्वाब सजा लें, इस हसीन रात को गले से लगा लें। कल फिर एक नई सुबह का स्वागत करना है, कल फिर एक नई सुबह का स्वागत करना है हमें मिलकर। आज की रात सब गिले शिकवे भुला दें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया में चल रहे संघर्ष अब क्षेत्रीय सीमाओं से परे पहुंचकर व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिनलैंड में हर वर्ष आयोजित होने वाले प्रमुख विदेश नीति और सुरक्षा मंच कुलतारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना मारिया बाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर चर्चा में उन्होंने ये बात कही। डॉ जयशंकर ने संघर्षों के दुष्परिणाम कम करने और अनुकूल कूटनीतिक परिस्थितियां निर्मित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने दोहराया कि भारत के ऊर्जा निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और ये कीमत और उपलब्धता को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं।

रोशनी से तेरी वहां चांद रूठा बैठा है, मैंने तुझे मांगा जब भी टूटता हुआ तारा देखा है। तेरे जैसी महक यहां किसी फूल में नहीं, यकीन कर मेरा मैंने हर बाग देखा है। जी हाँ, चांद अपने पूरे शबाब पर है और आप हैं मेरे यानी नाज के साथ। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और प्रोग्राम चल रहा है रात सुरमई। करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन पहले ये गीत सुनेंगे जो है फिल्म अनाड़ी से, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश जी की, संगीत शंकर जयकिशन का और बोल हसरत जयपुरी साहब के।

तो बात ऐसी है कि मुझे चांद देखना पसंद है और उसे चांद सा दिखना पसंद है। वो भी अपने दाग नहीं छुपाती, आंखों में काजल, माथे पे बिंदिया नहीं लगाती, होठों को उन्हीं के हाल पे छोड़ देती है। मुस्कुराते ही समाज के सारे बंधन तोड़ देती है। उसे कौन सिखाए सजना सवरना, बदल न जाए इस दुनिया का हाल वरना। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं कि वो आईने से अपना हाल नहीं पूछती, ये वो हाँ नहीं बेफिजूल से सवालों में नहीं उलझती। सोचो अगर वो काजल लगा ले, सोचो अगर वो काजल लगा ले तो एक दफा बस अपने उलझे बाल सुलझा ले तो। ये जमाना अपना रुख न बदल दे, हर कोई उसके साथ न चल दे, ये हवाएं रुक न जाएं कहीं उसे देखने को, ये हवाएं रुक न जाएं उसे देखने को कहीं। मैंने जब से देखा है उसे, मैं हूं बस वहीं, बस वहीं।

मरीज़े मोहब्बत हूं, एक तेरा दीदार काफी है। मरीज़े मोहब्बत हूं, एक तेरा दीदार काफी है। हर एक दवा से बेहतर निगाहे यार काफी है।

पत्थर है तेरे हाथ या कोई फूल है, जब तू कबूल है तो तेरा सब कुछ कबूल है। फिर तूने दे दिया है नया फासला मुझे, सर पर अभी तो पिछली मसाफत की धूल है। तू दिल पे बोझ लेके मुलाकात को ना, मिलना है इस तरह तो बिछड़ना कबूल है। तू यार है तो इतनी कड़ी गुफ्तगू न कर, तेरा उसूल है तो मेरा भी उसूल है। लफ्जों की आबरू को यूं गवाओ ना अदीम, जो मानता नहीं उसे कहना फिजूल है।

बहुत गहरी थी रात, मगर हम सोए नहीं। बहुत गहरी थी रात, मगर हम सोए नहीं। दर्द भी बहुत था दिल में, मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे भी, जाग किस लिए रहे हो और किस लिए सोए नहीं।

भी एहसासे मोहब्बत हो तो आ जाना, किसी टूटे हुए दिल की जरूरत हो तो आ जाना। हमारा दिल तुम्हारी याद में दिन रात जगता है, तुम्हारी भी अगर ऐसी ही हालत हो तो आ जाना। जमाना प्यार का दुश्मन तुम्हें आने नहीं देगा, मगर कभी कोई आने की सूरत हो तो आ जाना। तुम अपने दिल के मालिक हो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते। तुम अपने दिल के मालिक हो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते। न जी चाहे तो मत आना, तबीयत हो तो आ जाना।

हिज्र में एक रात ऐसे टाल देती हूँ, हिज्र में मैं एक रात ऐसे टाल देती हूँ, मैं खुद को जैसे सदमे में डाल देती हूँ। क्या तुम्हें सच में लौट के नहीं आना? चलो मैं तुम्हें एक और साल देती हूँ।

मुझे मालूम है तुम रास्ते क्यों भूल जाते हो। तुम्हें हर रास्ते के अंत से डर लगता है। कोई भी रास्ता जो देर तक सीधा चला जाए, तुम्हें लगता है ये भी न पहुंचेगा कहीं, या फिर बंद हो जाएगा आखिर में। तो यही अच्छा है कि कोई मोड़ मुड़ जाए और फिर मिल जाए शायद कहीं।

तुमको पाकर जो मिली उस मोहब्बत का क्या करूं, दिल न फट जाए इतनी खुशी का क्या करूं। मैं न कहती थी कि मैं तरसी हुई हूं प्यार की, लो मोहब्बत हो गई अब दोस्ती का क्या करूं। चांद मेरा है तो बस मुझ तक पहुंचना चाहिए। हर तरफ बिखरी हुई इस चांदनी का क्या करूं, जहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक। ये जो तुमसे हो गई उस आखिरी का क्या करूं।

चेहरे पर मुस्कान सजा कर रखना, यही तो जिंदगी है। गम में भी खुद को संभाले रखना, यही तो बंदगी है। क्या रखा है रोकर इस दुनिया को दिखाने में, मुस्कुराकर सब भूल जाना ही सबसे बड़ी दिल लगी है। और तुम्हारी हंसी के पीछे का राज ढूंढती रहती हूं मैं, तुम्हारी हंसी के पीछे का राज ढूंढती रहती हूं मैं, तो बस तुम्हारे मुस्कुराने की आस रखती हूं। रूठना मत कभी जिंदगी के इन थपेड़ों से तुम, तुम्हारी इसी मुस्कान में तो मैं अपनी कायनात देखती हूं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत के विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 4 उम्मीदवार कल आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्वाचित उम्मीदवार तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के बश्यम रामकृष्ण, सना सतीश बाबू और चिंतकयाला विजय तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और किसी अन्य उम्मीदवार के चुनाव न लड़ने के कारण रिटर्निंग ऑफिसर आर वनिता रानी ने उनके चुनाव की घोषणा की। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल कहा कि जैव औषधीय उत्पाद आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार दे रहे हैं और इस क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचेम द्वारा आयोजित द्वितीय फार्मा शिखर सम्मेलन एवं पुरस्कार

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमराही में। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

रात की खामोशी में जब प्यार की सरगम बजती है, तब दिल अपने प्यार के नाम की धड़कनों से महफिल सजा लेता है। मोहब्बत का सबसे सुंदर एहसास वही है जिसमें अपना कोई हर पल दिल के करीब महसूस हो।

प्यार की मीठी शरारतें और यादों की हल्की सी आहट रात को और भी हसीन बना देती है। कभी एक मुस्कान तो कभी एक याद दिल को बेकरार कर जाती है।

सच्चा प्यार किसी तुलना का मोहताज नहीं होता, वह अपने विश्वास और समर्पण से सबसे खास बन जाता है। जिस रिश्ते में अपनापन, वादा, प्यार हो, वह हर खुशी से बढ़कर होता है।

कभी कभी दिल की अनकहीं बातें ही सबसे गहरी मोहब्बत का एहसास कराती हैं। रात की तन्हाई में यादें वही सवाल पूछती हैं जिनका जवाब सिर्फ दिल जानता है।

प्यार में किए गए सच्चे वादे रिश्तों को उम्र भर की मिठास दे जाते हैं। जो साथ निभाने का वादा करते हैं वे दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहते हैं।

दुनिया में अगर कोई एहसास सबसे पुराना और सबसे नया है तो वो है प्यार ही। मोहब्बत हर दौर में दिलों को जोड़ने वाली सबसे खूबसूरत कहानी बन जाती है।

कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो पहली नज़र में ही दिल पर अपना नाम लिख जाती हैं। रात की चांदनी में पहली मोहब्बत की यादें आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं जितनी पहली बार लगी थीं।

और इसी के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, छोड़े जा रही हूँ आपको कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ। और आप कहीं मत जाइएगा, जी हाँ 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति, जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार। और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार उच्चतम स्तर पर सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नौवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने जहाज संचालकों, प्रबंधकों और पोत परिवहन कंपनियों को भी मौजूदा समुद्री सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने, स्थिति की पूरी जानकारी रखने और सरकार तथा सक्षम अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा जारी सलाहों पर लगातार नजर रखने की सलाह दी है। मंत्रालय ने हितधारकों से कहा है कि वे भारतीय नाविकों से जुड़ी किसी भी घटना की सूचना तुरंत नौवहन महानिदेशालय को दें ताकि तत्काल हस्तक्षेप और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष अधिकारी मयूम शारदा देवी राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। मणिपुर विधानसभा सचिवालय के सचिव और चुनाव अधिकारी ने उन्हें औपचारिक रूप से निर्विरोध विजेता घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सांसद लिशेम्बा संजावोबा का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2025-26 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 3,778 लाख टन रहने का अनुमान है। 2024-25 की तुलना में ये 70.39 लाख टन की वृद्धि दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि फल, सब्जियां, फूल और सुगंधित एवं औषधीय फसलों का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको के खिलाड़ियों ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच अपने पक्ष में कर लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की चुपके चुपके फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने, गीतकार अनंत बख्शी और संगीतकार एस जी बर्मन।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनते हैं अगला गीत फिल्म संसार से एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आपने गीत सुना फिल्म अनुराग से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार एस जी बर्मन। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म चला बापू से मुकेश की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म सफर से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार इंदीवर।

और कार्यक्रम को इसी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए और बढ़ भी रहा है। तो अगला गीत सुनते हैं फिल्म अभिमान से लता मंगेशकर, क्षमा कीजिएगा, किशोर कुमार की आवाज़ में, संगीतकार SG बर्मन, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म सरगम से मोहम्मद रवि और लता मंगेशकर की आवाज में। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे 100.1 MHz पर। मैं जल्द हाजिर होंगी 5:10 पर लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया।

0: और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियू की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार उच्चतम स्तर पर सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नौवहन महानिदेशालय ने प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने जहाज संचालकों, प्रबंधकों और पोत परिवहन कंपनियों को भी मौजूदा समुद्री सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने, स्थिति की पूरी जानकारी रखने और सरकार तथा सक्षम अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर लगातार नजर रखने की सलाह दी है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रहेंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलेन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष ए शारदा देवी राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। मणिपुर विधानसभा सचिवालय के सचिव और निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें कल औपचारिक रूप से विजेता घोषित किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2025-26 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 3,778 लाख टन रहने का अनुमान है। 2024-25 की तुलना में ये 70.39 लाख टन की वृद्धि को दर्शाता है। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच अपने पक्ष में कर लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Center,

एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ। भजन है फिल्म भक्ति में शक्ति से, मोहम्मद रफ़ी, दिलराज कौर और उमी और उनके साथियों की आवाज़ में।

हे प्रभु, आपकी कृपा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब विश्वास ईश्वर पर हो तो हर कठिन राह भी सरल और प्रकाशमय बन जाती है।

पंछी की तरह ऊंची उड़ान भरने के लिए मन को भय और संकोच से मुक्त करना पड़ता है। जो अपने सपनों पर विश्वास करता है उसके लिए आकाश भी सीमित नहीं रहता।